ইনসানুগে গুণমান ট্রান্সপ্লান্ট কুরুমগে বিল রাইসুল জুমহুরিয়া ডক্টর মোহাম্মদ মুইজ তসদিক করে ফেফি মে কানুন আমল কুরম ফশানি রাইসুল জুমহুরিয়া মে বিল তসদিক করবা দিবেহ সরকারকে গেজেটকা শাহি কুরা তারিখ ফিশকেন সাথে এক আড্ডিহ দোস হামাওয়া তারিখ ফিশকেন ফুরতম ফহরা মে বিল ফাস করবা তসদিক করবম ফুনুবম রাইসুল জুমহুরিয়া মানি রাইয়তুং মস্তি হুং আলম বিসনা ওয়াডাগত মং এদিবাডাগিং এ বিল আমরা ফুনুবাফ এ ফহু মজলিহগে ইস্তেমাই কমিটিং বিলং ইতুর বাইং ইসলাহতা গিন্নেউম ফহু এ কমিটিং দিরা সাকুরবা নিমে বিগতা মজলিহগে জলসায়ম বানি এপিল ফাসকুরবাফ মিবিল একুলবালবা ফাবানি দিবেহরাজেগা ইনসানুগে গুণমান ট্রান্সপ্লান্ট কুরুমগে খিদমত রক্ষা তিরিকমায়কু ফেমবার রঙ্গলকো ফোর কোদিনম বেনুবা গানুনি অনিগন্ড একুলবালা একমাগুলে উসুল তা খন্ডালা খিদমত দে ফরাতকা খিদমত লিবিগন ফরাতওগে হকু তাকা জিম্মা তা খন্ডলমগে মকসদগা মি বিলকা গুণমান ট্রান্সপ্লান্ট কুরুমাগুলে আমু হামতকা গুণমান হতিয়া কুরা ফরাতকা লিবিগন ফরাতগে হকুতা বয়াঙ্কু ফাবে রাইসুল জুমহুরিয়া ডক্টর মোহাম্মদ মুইজ বেভেমং হামজি ফাওয়া রাইয়তুঙ্গে আডু সিলসিলাক বেরবডাগতমং ইতুরু হতরু দায়রা কুন্নং হুশলমং হুলবালাফি রাজ্যগে ইন্তিখাবে নোয়াদি হতিন দায়রা গিতরে মিফাহারু নং হুশলমং হুলবালা ফাওয়ানি মাফান্নু দেখুনু দায়রা উঙ্গু ফার দায়রা খেলা দায়রা আদে ফুয়ামুলক দেখুনু দায়রাই রাইগিতুঙ্গে আডু বদলমুগ পেরবডাগতম বেনু ফুলওয়া বেফুলুং রাই সফিহুগে ওয়েবসাইট কামিকম খাসকো ফাওয়া পোর্টাল মেদুরিকো অন্ন হোম দুহুগে রেগন বারগডি সুমিনেটকে কুরিং নন্নোট কুরিপম বানি এদুবেডাফা মালে পড়তকুরফান মগু আলতরকি কুরি সরহদ মেদু হুলওয়ালানিকম বিনারা গেদরবেরিকম উমরানি তরগিয়া বেহে ওয়াজির ডক্টর আব্দুল্লাহ মুত্তালিব বিদার বেজে ವಜೀರ್ ಮಿಹಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅಲತ್ತರಕಿ ಕುಫಾವಾ ಪಾಕಿನ್ ಝೋನ್ ಸರಹದ್ದುಗ ಗಸಿಂದುಮುಗೆ ಹರಕಾತ ಫಹು ಮೀಡಿಯಾ ತಕಾ ವಾಹಕದ ಕಮು ಬಿನಾರಾ ಗೆದರ್ವೆರಿಕಮಾ ಉಮ್ರಾಣಿ ತರಕಿಯಾ ಬೆಹೆ ವಜೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲಿಬ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಗಸಿಂದುಮುಗೆ ಹರಕಾತಕಿ ಮಗುಹದುಮುಗೆ ಮಸೆಕೆಣ್ಣಿ ಮುಮಾಯಕು ರಯ್ಯಿತುನ್ನ ವಿಹಾವೆ ಸಿಫಸೇಹ ಮಾಲೆಗೆ ಮಲಮಚ್ಚ ತನವಸ್ಕಂಗಿನವೇನೇಗು ತಮ್ಮ ಮಸೆಕೈತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಹರಕಾತಿ ಕಮ ವಜೀರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ರುಂಗ್ ಇಂದುಮುಗೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರಮುಂದಾರು ಮಿಹಾರು ಗಸಿಂದಾ ಫಹುರಿ ಸರಹತ್ತವು ಕಾವಿಸ್ ರುಂಗ್ ಇಂದುಮುಗೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರಿಯಗಿಂದಾಣಿಕಮ ವಜೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುತ್ತಲಿ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಗುತ ಫೆಹಿಕುರುಮುಗೆ ಮಸೆಕೆ ಕುರಿಯಂಗುತ್ತನುಗ ಕುರಿಯಗಿಂದಾಣಿಕಮ ಅದಿ ತಫಾತು ಮಾಮಲಾ ಮಲೀಗೆ ಗಸ್ತಂಗ್ ಇಂದುಮುಗೆ ಮಸೆಕೆವಿಸ್ ಕುರಿಯದಾಣಿಕಮ ವಜೀರ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಅದಿ ಮಗುಗೆ ಮಸೆಕೆಂಗ್ ಎಕ್ಕೊಂಡ್ ನಿಮಿ ಮಿಯದು ಹವೀರು ಹತರಿ ಚಹಾರು ಆಮೊಣ್ಣ ಮಗು ಹುಳುವಾಲಾಣಿಕಮ ವಿದಾಳ್ವಿ ದಿವಹಿರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಿ ಕಮಾಯಕು ಕುರಿಯರ ಮುಂಗಣ್ಣ ತಫಾತ್ ತಾಯ್ರಾತಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕುರುಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್ತ ಫಹಿ ವಿಫಾವಾ ಮಂಜಿಲೆ ಕಮ ರಾಜ್ಯ ಜಪಾನ ಕಂಡಾಳುವಾ ಫುನ್ನವಾ ಸಫೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮಹ್ಲೂಫ್ ವಿದಾಳ್ವೆಜೆ ಸಫೀರ್ ಮಿಫದಾಂ ವಿದಾಳ್ವಿ ಜಪಾನ್ ಎಂಬಸಿನ್ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕುಗೆಂಗ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೆಬಿನಾರ್ಗ ವಾಹಕದ ಕಮು ಸಫೀರ್ ಮಹ್ಲೂಫ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟನಿವಿ ಅದಿ ದಿಗು ಮುದ್ದತಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ ಮಗ್ಫಹಿ ಕೊದ್ದಿನ ಮಟಕ ಗಾನೂನಿ ಅದಿ ಇದಾರಿ ಇಸ್ಲಾಹು ತಕಾಯಕು ದೆಫು ಫೆನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರುಣ್ಣ ರಟ್ಟೆಹಿ ಮಾಹೌಲ ಕಾಯಂ ಕುರುಮುಗ ದಿವೆಹಿ ಸರ್ಕಾರ ದಿಮಿಯುಣ್ಣಾಣೇಕಮ ಖಾಸಕೊಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್

0: थुरास थुरास
1: थुरास ए तरीका अहर मेंगे बहा सगाफता आध कादाय के तेरेगा आध बावर गंते तके हुरे अडवहा लंबेनम ता
2: हाँ वारा पैनो
3: दिविराजे गड़ा ठियून कोला अंगार दो घाविर फाहिज जहर बुरास दो घाविर हाथर गड़ फने रैग अदी आदित दो घाविर फाहिज जहर हमें कने दिविराजे के आड़ो

0: Javi.
1: Javi.
2: फायर हवी शो में तो दत्त में कुरे में बगीचा है बगीचा गत में उड़े कुड़े उड़े कुदी ना वहाँ के दा क्या शो कुरे में गेंदा नहीं ये माहूरी हाँ कुदी में ना बैबर वे ने गोत का शो में कुरे गेंदा नहीं बेरा नोक में भी माह उड़ाले कनुजे ने वाला फसी है कुते में आने का बोले नहीं कुदी ना का वहाँ दखा लम में गेंद मिगे अस्सलाम वालेकुम की खोला नहीं थी बगीचा है की कुरा
3: सवाल का जवाब दे
2: बगीचा के करो सवाल करे तो मैं करो बगीचा का सवाल हो रहे हो रहे तो सवाल है कुलें दो दिए
3: यस
2: मैं कुले भी जत गेम था
3: यस
2: कौन गेम था के कुले ले
3: कुले ली बे कुले ली ठेगो एक कुलें हो रहे लोगों फोर्ट नंबर ये भी नीरा दें हैं कोलम दें दोंबे में पाहुं भी दें कामा नीरा या तुतु इंडी मटिगा योता मटिगा दें दोंबे आमे हिफांगों लाइक फुम्मा लाफा
2: ये कोलों कोले वर दो कुदिंग मितना ऐसा भी अमी दुएले बनी है मैं कहा तो कोले वर मितना आम था दो मेहंगा मैं फारो दन मी रेडियो में कुरा मसे के तब स्कूल ला मा दो मे हार ए बई हा फहा का हता का दे नंबर नगा फा देन को नंबर नगाने करम करम नगाने को नंबर आले नंबर फहा का हता का मी नगा करम नगन जे ए हे नंबर न दो एक को मेरी नंबर तो
3: को नंबर का
2: हां एक को दे गोरे नंबर तो को नंबर मितन नगाने
4: ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮೇಲೆ ಲವೇ ಜಾಲಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕುಜ್ಜ ಕಾವಾಗ ದಕ್ಕಾಲಣ

पप्पे माफ कर, दुनिया के होर क्या होता है, दरफुला होता है पप्पे, पप्पे कमा कर बैगोरे होर क्या मस्त।

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होगेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं